0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাৰ হিন্দীত আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মনোজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित

0: GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, SDRF और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। SDRF के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री, पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मिस्टर मोदी स्टेटेड दिस ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद द CEOs एंड फाउंडर्स ऑफ 20 स्पेस स्टार्टअप्स रिसेंटली। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंटरेक्शन व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन नेशनल स्पेस डे यस्टरडे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो हाईलाइटेड इंडियाज कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस इन लॉन्चिंग स्पेस वेंचर्स। During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The 2-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. The Ministry of Tribal Affairs will organize a 3-day national conclave on tribal languages and museums from today till Wednesday in Mysuru, Karnataka. The conclave will bring together a national dialogue on documentation, preservation and revitalization of tribal languages. The event will strengthen tribal museums and tribal freedom fighter museums across the country. The national conclave advances the Prime Minister's roadmap for a Viksit Bharat 2047, under which reviving India's traditional knowledge systems and ensuring no community is left behind remain key pillars of inclusive national development. The conclave will be inaugurated by Union Minister of State for Tribal Affairs, Durga Das Uike. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar reached Moscow on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 20th

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता

0: एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और

0: कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: हर हर महादेव।
4: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: हर हर महादेव।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं।

0: से अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kenitza Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मंत्र है कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. More from our correspondent.
3: The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. During the DGP-IGP conference in 2016, Prime Minister Narendra Modi had directed the security and police heads to hold the National Security Strategies Conference every year, with the objective of finding solutions to major national security challenges using the extensive experience of the cutting-edge level officers working at the grassroots level in collaboration with domain experts. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will co-chair the 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation with First Deputy Prime Minister of Russia, Denis Manturov, in Moscow today. He will also meet

প্ৰতি পুৱা 8:15 পৰা 8:25 সোধা কণ্ঠৰ গীত প্ৰতি পুৱা 8:15 পৰা 8:25 সোধা কণ্ঠৰ গীত।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता

0: वर्णन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता।
1: गोयल सेड इंडिया एंड जापान शुड यूज द 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस टू डीपन बिजनेस कोलैबोरेशन एंड शेप देयर इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर द कमिंग डेकेड। External Affairs Minister S. Jayashankar will co-chair the 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation with Russian First Deputy Prime Minister Denis Manturov in Moscow today. He will also meet his Russian counterpart Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the 2-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The 2-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. Vice President C.P. Radhakrishnan arrived at Musunuru in Eluru district of Andhra Pradesh, where he was received by Governor S. Abdul Nazir and Chief Minister N. Chandrababu Naidu. The Vice President will shortly unveil India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed at the Gourmet Popcornica facility. The initiative aims to make agriculture more profitable by adding value to farm produce through processing, branding and better market access. The Vice President will also felicitate farmers and address agricultural stakeholders at the program. The Bihar government has issued notification for the formation of a 5-member special committee to bring comprehensive reforms in the state's examination system. The committee will be headed by a retired Supreme Court judge or a serving or retired High Court judge. The committee will recommend measures to prevent question paper leaks, cheating, malpractice at examination centres, tampering with answer sheets and unauthorised interference in results. The committee will submit its recommendations to the state government within 3 months. The Madhya Pradesh government has started an initiative to involve central institutions in the state's development. The aim is to make Madhya Pradesh prosperous by 2047, a conclave on contribution of centrally funded institutions for Samridh Madhya Pradesh at 2047 will be held in Bhopal today. Chief Minister Dr. Mohan Yadav will inaugurate the conclave at 11 a.m. The main focus will be the One Institute, One Promise initiative. Iran has said vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission spokesperson, Ibrahim Rezai, stated that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions. Benchmark domestic equity indices pared their early gains and were trading in the negative territory in the forenoon session today. The Sensex dropped 204 points to 77,337, while the Nifty fell by 67 points to

सनी भाइयों, आपसे कुछ ही पलों में हम प्रारंभ करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर। पर उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम 12:30 पर आप सुन पाएंगे आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम तराना, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार,

एक बजकर 10 मिनट पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गीतमाला, 1:40 पर वतन के तराने, 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, और 2:30 पर आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका, और इसी के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

सनी भाई, फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की युगल आवाजों में फना फिल्म से। अब आइए सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की युगल आवाजों में बादशाह फिल्म से यह गीत।

सैनिक भाई, बादशाह फिल्म का गीत अभी आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, रिफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में।

لوهانسبرغ. सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं आज का गीत। आज हमने लिया है कुमार सानू की आवाज में परदेश फिल्म से ये गीत।

सैनिक भाइयों, अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमेशा की तरह कल भी हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ होगा दोपहर 12:10 से। 12:12 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर गीत अपना धुन पर आए, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

सैनिक भाई, 1:10 पर आप सुन पाएंगे एक ही फिल्म के गीत, 1:40 पर भूले बिसरे गीत, 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। सैनिक भाइयों, 2:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। इसी के साथ 2:03 समाप्त होगा हमारा कल का प्रसारण। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 279 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराना। इस कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं।

सनी भाई, कार्यक्रम तराना में अभी आपने सुना महक एल्बम से ये गीत पंकज उदास की आवाज में। अब आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में दीवाना एल्बम से ये गीत।

सोनू निगम की आवाज में अभी आपने सुना दीवाना एल्बम से ये गीत। सनी भाइयों, अब आइए सुनते हैं एल्बम मोहब्बत से ये गीत आशा भोसले और आदनान सामी की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना, और अभी आपने सुना मोहब्बत एल्बम से ये गीत। अब आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। एल्बम है रात और आवाज है अनुराधा फर्डवाल और बाबुल सुप्रियो की। आइए सुनते हैं ये गीत।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे मीडियम एफ 529.1 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतमाला, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

सनी भाई, गीतमाला कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, तीन देवियां फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अब आइए सुनते हैं ताजमहल फिल्म से गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना ताजमहल फिल्म से ये गीत। सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला और अब आइए सुनते हैं लाल पत्थर फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला और अभी आपने सुना फिल्म आनंद से ये गीत मुकेश की आवाज में। अब आइए सुनते हैं श्री 420 फिल्म से गीत मन्ना दे और लता मंगेशकर की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिष पर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन के तराने। सॉन्ग ऑफ इंडिया फिल्म से आइए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, शांति माथुर की आवाज में।

सही कम आगे ही आगे।

सैनिक भाइयों, वतन के तराने कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं और अभी आपने सुना प्रेम पुजारी फिल्म से गीत मोहम्मद रफ़ी और मन्ना दे की आवाज़ों में। अब आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत मुझे जीने दो फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना सराबी फिल्म से ये गीत। और सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं वतन के तराने कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, आंखें फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: damaged. According to the Central Water Commission, the water level of the river has risen above the danger mark at all major ghats in Patna. In view of the worsening flood situation, Chief Minister Samrat Chaudhary spoke to West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari over the phone and apprised him of the gravity of the situation. West Bengal Chief Minister has assured prompt action in this regard. Sabita Parikh, Akashwani News, Patna.
1: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. In cricket, India resumed their innings after lunch against host Sri Lanka in the day two of the second and final test in Colombo. India were 471 for 8 when reports last came in. Rishabh Pant, returning after retiring hurt on day 1, battled through a barrage of short balls to remain unbeaten on 63, while Dhruv Jurel made 59 to power India through 419 for 6 at lunch. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 off 193 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 more groups of countries. Supreme Court issues notice to centre on plea seeking CBI probe into JPSC exam irregularities. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi this evening. External Affairs Minister S. Jaishankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. And in Test cricket, India holds strong position against Sri Lanka with 471 runs in the first innings at Colombo. Devdutt Padikkal smashes 117 runs. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन के डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
3: We have about 80 companies.
4: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
3: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

0: and credit card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed desertification, integrated nutrient and pest management, on farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
2: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने ये समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
4: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
5: पीएमएफएमई की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदल कर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने एमओयू साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: www.newsonyaya.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के

0: कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद सैनिक भाइयों, आप सभी का हमारे इस प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम चयने का। इस कार्यक्रम में आज हमने लिया है राजा हिंदुस्तानी फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं ये पहला गीत।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाइने का और आज हम बात कर रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म के बारे में और सुना रहे हैं इसी फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। सनी भाई, अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत। राजा हिंदुस्तानी वर्ष 1996 में रिलीज हुई एक बेहद लोकप्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिनका निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया था। यह फिल्म 1965 की प्रसिद्ध फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित थी। रिलीज होते ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 1990 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। सनी भाइयों, आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक बेहद ही खूबसूरत गीत।

सनी भाई, अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ये गीत। चयनिका कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं इसी फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत।

0: 聴会。
1: सुनी भैया, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चयनिका और आज हम सुन रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। इस फिल्म में आमिर खान राजा और करिश्मा कपूर आरती ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। आमिर खान ने एक सीधे साधे स्वाभिमानी टैक्सी ड्राइवर का किरदार निभाया, जबकि करिश्मा कपूर ने एक अमीर घराने की पढ़ी लिखी लड़की का रोल किया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और शानदार अभिनय को दर्शकों एवं समीक्षकों द्वारा बहुत खूब सराहा गया। अब आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक सुंदर गीत।

इसी के साथ यह कार्यक्रम चैने का यही पर समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए हमारा आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अमित बासकोटा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के संस्करण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नेहा और आज के कार्यक्रम में किस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं? अब देखिए भाई, बारिशों का मौसम चल रहा है, ऐसे में आपको जोड़ों की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, ज्वाइंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि बरसातों में ज्वाइंट्स में जो समस्या आ जाती है, आपके जोड़ों में जो तकलीफ होती है, उसका कैसे निदान करें, क्या कारण होते हैं और किस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं जब जोड़ों की बात आती है इस मौसम में, तो इसी विषय पर आज होगी बहुत सारी बातचीत। और हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ होने वाले हैं डॉक्टर दीपक जोशी, आप प्रोफेसर हैं, साथ ही ऑर्थो सर्जन हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। विषय एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, आज के रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में बातें होंगी ज्वाइंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेनी सीजन विषय पर, यानी बरसातों में जोड़ों की समस्याएं। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज बातें इसी विषय पर होंगी। बस एक गाना सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा और बहुत जल्द इस विषय पर होगी हमारी बातचीत।

0: भाई इनकी तरह अगर आप भी ठुमकना चाहते हैं तो ऐसे में आपके जोड़ आपका साथ दें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन जब बातें बरसातों की आती है, मॉनसून का मौसम होता है ना, तो ऐसे में जोड़ों में बड़ी सारी समस्याएं होती हैं। खासकर जो उम्र दराज लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती है जोड़ों में। लेकिन ऐसे में क्या हम सावधानी बरत सकते हैं, किन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं ताकि मौसम चाहे कोई भी हो हमारे जोड़ों में कोई समस्या ना आए, तो इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में हम आपके साथ बिल्कुल यहां पर जुड़ चुके हैं। आज का विषय है जॉइंट प्रॉब्लम्स इन रेनी सीजन। हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक जोशी हमारे साथ हैं। आप प्रोफेसर हैं, ऑर्थो सर्जन हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत एफएम रेनबो दिल्ली पर।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।
0: ऑलराइट डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले तो यही मेरा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि किस तरह की जोड़ों में समस्याएं होती हैं मॉनसून्स में।
1: मॉनसून या रेनी सीजन या विंटर्स ले लें, जैसे जैसे तापमान थोड़ा सा कम होता है तो जो कोलेजन है बॉडी का वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। तो जो ऑलरेडी डैमेज जॉइंट्स होते हैं, जैसे जो बुजुर्ग जैसे आप कह रहे हैं तो उनमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, और ऑलरेडी जॉइंट में इन्फ्लामेशन जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है या इन्फ्लामेशन जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो इनके जो सिम्टम्स हैं, इनकी जो तकलीफें हैं, वो बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब जोड़ों में स्टिफनेस और दर्द जो है वो बढ़ जाता है आमतौर पर इन ऐसी सिचुएशंस में।
0: और ऐसे में फिर रोजमर्रा के जो काम होते हैं, बैठना उठना
1: सीढ़ी चढ़ना उतरना, उसमें समस्या आ सकती है।
0: अच्छा, ये बुजुर्गों में ज्यादा होती है जैसा कि अभी आपने मेंशन किया।
1: हाँ, बुजुर्गों में, क्योंकि मेनली है कि जो जॉइंट डैमेज्ड है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है देन जो प्रिस्टीन ज्वाइंट होता है उसमें छोड़ के। तो डैमेज ज्वाइंट जो एजिंग प्रोसेस जो होता है बॉडी में, उसके हिसाब से जो कार्टिलेज थोड़ी बहुत डैमेज होती रहती है विद एज के साथ साथ, तो इसलिए सारा का सारा जो दारमोदार वो लिगामेंट्स और मसल्स के ऊपर ही रहता है इन लोगों का, मतलब जो बेसिकली जिनको स्ट्रांग करना होता है। तो मोस्टली फिर ये जब इस तरह का मौसम होता है, थोड़ा सा तापमान गिरेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ये जो कोलेजन जो बॉडी का होता है वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है।
0: अच्छा।
1: तो स्पेशली ये जो डैमेज कोलेजन है ये ज्यादा स्टिफ होता है, इसमें इलास्टिसिटी कम होती है, इस वजह से जो दर्द है जोड़ों के वो बढ़ जाते हैं।
0: अब बहुत सारी बातें करने को है यहाँ पर कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर लाइन पर है। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम सुनील जुनेजा है,

0: मेरी एज 56 है।
1: जी जी, सुनील जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: दिल्ली लक्ष्मीनगर से।
1: बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए।
0: सर से पूछना था, मेरे ना बैक बोन में कई सालों से पेन रहती है बहुत, क्योंकि एक्चुअली मेरी मदर को ना पहले पैरालिसिस था, तो मैं उनको नहलाने धुलाने के लिए उठाता था
1: जी।
0: तब से मेरे को ये पेन है, और ये पिछले साल मैं एक बार सीढ़ियों से भी गिर गया था, तो मेरे छत से मतलब बैक साइड मतलब रीढ़ की हड्डी वाली साइड से ना बैक पीछे था मेरे, उससे बच गया मैं, लेकिन उस टाइम से मतलब काफी पेन रहती है मतलब। और तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले चेक भी करा था, विटामिन डी भी बहुत कम आया था मेरा।
2: 56 ईयर जो इस एज है, इस एज में आमतौर कैल्शियम, विटामिन डी और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम काफी होती है, इसकी वजह से भी कमर में दर्द काफी देखने को मिलता है। दूसरी है कि क्योंकि आप काफी मेहनत वाला काम करते थे, काफी मतलब हार्ड वर्क करते थे उठाने में उनको, तो उस वजह से भी जो डीजनरेशन है बॉडी को, जितना बहुत ज्यादा यूज करेंगे उतना डीजनरेशन बढ़ता है, तो चांसेस हैं कि आपको लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो या हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्क की प्रॉब्लम भी हो। तो आमतौर पर अगर बहुत ही दर्द ज्यादा है और पैरों तक जा रहा है तो आपको बहुत मतलब आपके दिन डेली एक्टिविटीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको किसी डॉक्टर को डेफिनेटली स्पाइन सर्जन को दिखाना चाहिए। अगर बहुत माइल्ड है और आपने बताया जैसे विटामिन डी कम है, तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम एडिक्वेट मात्रा में लेना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली इस एज में हमें 1300 mg के करीब कैल्शियम चाहिए होता है, तो आप अपनी डाइट में देख लें कि उतना है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप सप्लीमेंट करें उसको टैबलेट्स के साथ, और साथ में आप विटामिन डी डेफिनेटली, अगर बहुत कम है, अगर 10 से कम है तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा 20-25 के आसपास है तो आप दवाइयां ले सकते हैं, हफ्ते में एक गोली ले सकते हैं करीब 3-4 महीने तक। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, जो लंबर स्पाइन की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एक्सरसाइज है वो करनी है। वो किस तरह की एक्सरसाइज करनी है वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर बताएंगे आपका एक्सरे देख के।
1: उम्मीद करती हूँ सुनील जी आपने डॉक्टर साहब की बात नोट की है, और जैसा जैसा उन्होंने कहा है आप बिल्कुल वैसा करें और आपकी समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो
3: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी नमस्कार जी, मैम मैं अंशुल बात कर रहा हूँ मेरठ से।
1: अंशुल जी स्वागत आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछें।
3: सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि हम जब एसी में सोते हैं ना, एसी चलाते हैं
1: जी,
3: तब हमें पेन होता है, यानी कि खिंचाव सा होता है, तो क्या इस कारण एसी भी समस्या का कारण बन सकता है?
2: आपकी उम्र कितनी है?
3: जी 25 साल।
2: 25 साल, हाँ। कुछ लोगों को जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहते हैं हम लोग, उनको एसी के अंदर आमतौर पे देखा गया है कि जोड़ों के दर्द और पेन्स बढ़ जाते हैं। मतलब बेसिकली एसी, आप एसी के बिल्कुल आगे सामने सोएंगे, बिल्कुल हवा आपके ऊपर आ रही है तो वो उस तरह ही काम करेगी जैसे ठंड का मौसम आ गया हो, तो जैसे ठंड में जो कोलेजन है वो बॉडी का स्टिफ हो जाता है और स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपको अपने टेस्ट वगैरह कराने चाहिए, मतलब आमतौर पर लोगों में होता नहीं है ये इस एज में 25 साल की उम्र में। अगर आपको अपने टेस्ट आ रहे चाहिए, विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल और विटामिन B12 लेवल आपको अपना कराना चाहिए, अगर वो कम है तो आपको एडिक्वेट अमाउंट में लेना है, और एक्सरसाइज डेफिनेटली एज यू, चाहे बच्चा है चाहे जवान है चाहे ओल्ड है, सबको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए।
1: और ये सुझाव उन तमाम सारे लोगों के लिए है, उम्र चाहे जो भी है, एसी में सोते हैं क्योंकि मौसम ऐसा है, एसी के बिना रहा भी नहीं जाता। तो अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, डाइट पर फोकस करें, तो ये समस्या थोड़ी आपकी कहीं ना कहीं कम जरूर हो जाएगी। हेलो
4: हेलो
1: जी नमस्कार, नाम बताएं।
4: नमस्कार, GS चट्ठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्ते
1: जी
4: डॉक्टर साहब, जैसे ही मौसम चेंज होता है ना मेरे घुटने में दर्द होने लग जाता है, तो एंटीबायोटिक खाते हैं या पेन किलर खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? ऑइंटमेंट लगाएं तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, खान पान में क्या लें ताकि इससे थोड़ा सा फायदा हो जाए और दर्द ज्यादा ना हो?
2: देखो सबसे इम्पोर्टेंट है जी, जैसे ये जो मौसम है मानसून है, इसमें चलो टेम्परेचर तो कम होता है लेकिन साथ साथ ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है, तो जो पानी का लॉस है, स्वेटिंग है, वो काफी होती है, हमारा शरीर से पानी काफी निकलता है स्वेट बन के, तो जो हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, ये भी बहुत कॉमन है इसमें। तो जो नॉर्मल आप पानी पीते हैं करीब 2 से 2.5 लीटर जरूर पीना चाहिए, लेकिन इस मौसम में अगर आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो इसको इंक्रीज करके करीब 2.5 से 3 लीटर कर देना चाहिए। दूसरा आपको कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलर लेना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी मसल्स को, एज के साथ साथ जो है ज्वाइंट्स खराब होते हैं लेकिन मसल्स हमेशा जवान रहती हैं, अगर आप मसल्स को स्ट्रांग करेंगे तो आपका जो फोर्स है मसल्स लेंगी और ज्वाइंट्स नहीं लेंगे, तो आपको पेन कम होगा।

0: तो एक्सरसाइज, अच्छी डाइट में आपको बेसिकली जो ग्लूकोसामीन ज्यादा लेने हैं, या तो आप टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, जो या आप लीफी वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और गूदे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, इनमें ग्लूकोसामीन काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं और इस मौसम में तो ये अवेलेबल भी है। आई थिंक आप ये खाने में आप ये इंक्रीज कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
1: नमस्कार जी, सवाल पूछें।
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: हाँ नमस्ते
2: डॉक्टर साहब। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब ये बरसात का मौसम आता है ना,
0: हाँ जी,
2: तब मेरे घुटनों में पेन तो इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है।
0: हाँ।
2: तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ड्राई फ्रूट में क्या लिया जाए जिससे ये दिक्कत दूर हो जाए, कृपया बताने का कष्ट करें।
0: ड्राई फ्रूट में आप अखरोट लीजिए। अखरोट में, अखरोट मतलब जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भी लेना। अखरोट और बादाम आप ले सकते हैं, लेकिन अखरोट से माना जाता है कि वो कार्टिलेज के लिए काफी अच्छा होता है। डाइट में आप ये लें, लेकिन एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया, पानी इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए और साथ में एक्सरसाइज करें।
1: जी डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जब ड्राई फ्रूट्स की बात आती है तो ये एक मन में बड़ी संशय होता है कि भाई इसको भिगो के खाएं कि डायरेक्ट खा सकते हैं।
0: हाँ, कुछ लोग जैसे हम लोग भी हैं, हम भिगो के ही खाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट खाएंगे तो कई कुछ लोगों को मुंह में एलर्जी या अल्सर्स, इस तरह की प्रॉब्लम
1: निकल आते हैं। हाँ,
0: इस तरह की प्रॉब्लम होती है,
1: तो
0: भिगो कर ही खाना चाहिए,
1: चाहे वो अखरोट हो या फिर बादाम हो।
0: और एडिक्वेट मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, लिमिट में खाना,
1: लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें जो लोग ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: नमस्कार जी मैडम, सदाशिव पालकर, महाराष्ट्र, नवी मुंबई से।
1: नमस्कार भाई साहब, सवाल पूछे। सवाल पूछे।
3: हाँ, मेरा डॉक्टर साहब को सवाल है। डॉक्टर साहब जी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते
3: साहब जी, मेरी एज है अभी 67।
0: हाँ जी।
3: अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जोड़ों का या गुड़गे का या कमर का कोई भी तकलीफ नहीं है।
0: बहुत बढ़िया,
3: बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, क्योंकि सुबह शाम मैं कंपलसरी योगा करता हूँ।
0: हाँ, इसी वजह से और इसी।
3: लेकिन आगे चल के मुझे ना हो तो उसके लिए प्रतिक्रिया कुछ बता दीजिए, क्या खाना और कैसा चलना वो जरा प्लीज।
0: योगा आप करते रहें, योगा से बढ़कर कुछ नहीं है। और एक्सरसाइज करें, वॉक करें और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, कमर की, घुटने की, जो सिंपल वो योगा में भी आप करते होंगे वही सब। अभी तक आप ठीक हैं तो आगे भी ठीक रहेंगे। डाइट में अपना आप कैल्शियम, विटामिन डी साल में 3 महीने लीजिए और साथ में, या और एडिक्वेट अमाउंट आपने दूध और ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स आप अपने आप कम करिए इस एज में, और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: वो ऑलरेडी अपना इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं तो आगे भी मेंटेन करेंगे। डॉक्टर साहब एक मैसेज ले लेते हैं, गोलू का मैसेज आ गया है मेरठ यूपी से। कहते हैं 23 वर्ष के हैं और इनके घुटनों में और लेग्स में कई बार कट कट की आवाज आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है?
0: ऐसा है गोलू जी, दो तरह की, एक तो होता है कि पूरी बॉडी में कट कट की आवाज आती है, ये नॉर्मल होती है, 1 in 1000 मतलब 1000 में 1 इंसान में इस तरह की नॉर्मल आवाज आती है। नॉर्मल, इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये जनरली आपको वैसे फील होता होगा लेकिन ये कुछ करना नहीं होता। लेकिन अगर आपको इसमें तकलीफ है, दर्द हो रहा है और आपकी लॉक हो रहा है नींक हो, या आपका नींक फंस जाता है किसी पोजीशन में, तो ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम, डिस्कॉइड मेनिस्कस हो सकती है, या मेनिस्कस का टेयर, वॉशर का टेयर हो सकता है, या वॉशर की बनावट चेंज हो सकती है, तो उसका इलाज पॉसिबल है सर्जिकली या एक्सरसाइज से पॉसिबल है, तो वो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर एज सच जो आवाज आना जोड़ों में से, ये काफी पेशेंट्स में, काफी लोगों में नॉर्मल होता है,
1: नॉर्मल होता है। डॉक्टर साहब एक और मैसेज है, हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं प्रेमचंद प्रेमी जी, धामपुर जिला बिजनौर से। ये 58 इयर्स के हैं, कहते हैं कि ये अपने जीवन में एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह रहे हैं और अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी ये पनीर, दाल और चावल जैसी जब चीजें खा लेते हैं तो इनके जोड़ों में बड़ी तकलीफ होती है।
0: अब ये पनीर जो आप रिलेशन बता रहे हैं, तो अपना यूरिक एसिड जरूर टेस्ट कराएं, क्योंकि जो प्रोटीन से रिलेटेड ज्वाइंट पेन्स होती हैं उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो इसमें लो प्रोटीन डाइट हमें देनी होती है। तो अपना अगर आपका यूरिक एसिड ठीक है तो आई थिंक थोड़ा आप रिड्यूस करके देख सकते हो, पर अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाई लेनी पड़ेगी और प्रोटीन्स की मात्रा कम करनी पड़ेगी।
1: इसके लिए फिर कौन सा टेस्ट कराना होता है अगर हमें?
0: सेरम यूरिक एसिड कराना है आपको।
1: चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो।
4: हेलो जी।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
4: जी मेरा नाम राजेश है जी, मैं सुकुरबस्ती से बोल रहा हूँ।
1: राजेश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें आप।
4: सवाल ये है जी कि जब सर्दी ज्यादा होती है तो तब भी घुटनों में दर्द रहता है, और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है तब भी घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है।
0: जी सर्दी और गर्मी दोनों में दर्द हो सकता है। जो गर्मी में दर्द होते हैं वो होते हैं क्रैम्प्स की वजह से, वो हीट क्रैम्प्स।

0: और पैरों के पंजे, इनमें जो है बहुत ज्यादा हमें दर्द महसूस हुआ करती है। ये जो ज्वाइंट जितने भी हैं ये पैरों में, टखने में, घुटनों में और पंजों में, ये दर्द हमको हुआ करती है। अच्छा, और ये लगभग 1 या 2 बजे इधर से और शाम को लगभग 6-7 बजे तक ये महसूस होगी, फिर अपने आप से खत्म हो जाती है। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं?
1: हाँ, ये जो जोड़ों में दर्द है, जो डिस्टल जॉइंट्स हैं, जैसे हाथों की उंगलियों या पैरों में भी जो डिस्टल जॉइंट्स में दर्द हैं, तो इनमें जो दर्द है, जो अकड़न रहती है, जो आप कह रहे हो कि धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। हमें ये रूल आउट करना है कि इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी नहीं, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना हो। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर है, यूरिक एसिड है, ESRCFE, वो आपके फिजिशियन आपको बताएंगे, वो आपने सारे टेस्ट कराएं। अगर वो नॉर्मल हैं, मोस्टली वो नॉर्मल निकलते हैं, लेकिन कुछ में अगर पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंगली दवाई देनी पड़ती है। अगर वो नॉर्मल है तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी ही लेना है, और आपको हो सकता है कि स्टॉकिंग्स पहन के चलना, हो सकता है आपको वेन्स की, नसों की प्रॉब्लम हो, तो आपको एक तो कैल्शियम विटामिन डी रेगुलर लेना है अराउंड 2 to 3 months इन ए ईयर, और साथ में एक्सरसाइज करनी है। अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो आपको हो सकता है पैरों में स्टॉकिंग्स पहननी पड़े।
2: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज है अहमदाबाद से ललित भाटिया जी का। ये 63 इयर्स ओल्ड हैं और 2-4 दिन से इनके दाएं पांव में मसल स्टिफ हो गया है, तो सोल्यूशन आपसे चाहते हैं।
1: 2-4 दिन ही हुए हैं तो हो सकता है मसल पुल हो गया हो। अगर मसल पुल हो गया तो उसके लिए दवाई लेनी है दर्द की, और साथ में आप थोड़े दिन फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग कराएं, आई थिंक ठीक हो जाएगा 2-3 दिन पुराना दर्द। तो
2: कोई ऐसी ज्यादा समस्या की बात नहीं है। हेलो
0: हेलो
2: जी, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं सुनील जी ने बोल रहा था, मैं अभी बीच में मेरा फोन कट गया था, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा।
2: एक्चुअली
0: मेरे बैकबोन में जैसे पेन था, तो मैं पहले बेल्ट भी लाया था। बेल्ट यूज कर, किसी ने मना किया है कि बेल्ट आप बिना डॉक्टर के उसके यूज ना करें
2: जी।
0: और एक और क्वेश्चन था कि जैसे मैं बचपन से गोदन परिक्रमा करता, तो घुटने पे भी मतलब काफी कई स्वेलिंग से आती है, और थोड़ा कई बार उसमें दर्द होता है बहुत।
1: जी डेफिनेटली, और आपके इतनी 57 एज 56 ईयर जो आप बता रहे थे, और आपके घुटनों में दर्द है, तो आर्थराइटिस होगी। घुटनों में कितनी सीवियर है ये एक्सरे देख के ही पता लगता है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर है कि बिल्कुल घुटना से घुटना खत्म ही हो गए हैं, चला नहीं जा रहा है, तो घुटने का ऑपरेशन करना पड़ता है, बदलना पड़ता है घुटने को। अगर माइल्ड है तो एक्सरसाइज और कुछ स्पेशल दवाइयां होती हैं आर्थराइटिस के लिए, वो लेनी होती हैं, उससे आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। बेल्ट लगाने में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेल्ट मतलब जबरदस्ती भी लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर बेल्ट लगा के चलेंगे तो मसल्स वीक होंगी। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स की सलाह लेनी है, जैसे आपको बताया, वो आपको एक्सरे देखेंगे घुटने का भी और स्पाइन का, फिर अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे क्या करना है।
2: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज है गाजियाबाद से, मनोहर लाल गांधी हैं चाणक्य चौक से, और जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को कमर में दर्द होता है, घुटने और पैरों में तकलीफ होती है, उन्होंने किस तरह के जूते चप्पल उनको पहनने चाहिए? कई बार डॉक्टर्स कोल शूज की काफी बातचीत होती है, तो किस तरह का फुटवेयर पहनना चाहिए?
1: हाँ, जो ऐसी बेसिकली है कि आपको ज्यादा हील नहीं होनी चाहिए जूतों में, शूज में, क्योंकि उससे नी पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है। जिन लोगों को फ्लैट फुट होता है उनको स्पेशल शूज फ्लैट फुट के हिसाब से पहनने होते हैं, मीडियम लार्ज पहननी होती है। डॉक्टर शोल्स के जो शूज हैं, ये चप्पल डेफिनेटली ये काफी मतलब लोगों में ये है कि वो पहनना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए होती है, प्लांटर फेशियाइटिस जिसको कहते हैं। उसमें पैरों में दर्द होता है, जब पहला पैर फुट रखते हैं तो पैरों के अंदर इन्फ्लामेशन होती है और हील के अंदर पेन ज्यादा होता है, उनको फिर रिकमेंडेड होता है कि डॉक्टर शोल्स की चप्पल पहने। आजकल काफी सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिनको काफी फुट की जिनको लोगों को प्रॉब्लम है, जिसमें हम फुट प्रेशर स्टडीज करते हैं। आप मॉल्स में भी जाएंगे तो काफी आपको जूते आप वो बताएंगे कि आप पहले चलाएंगे आपको उस पर, फिर आपको फुट प्रेशर देखेंगे, फिर उस तरह से रिकमेंड करेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है चलने फिरने में और आपको लग रहा है कि पैरों में कुछ डिफॉर्मिटी वगैरह है, तो फुट प्रेशर एनालिसिस करा के आप जूते पहन सकते हैं। पर मोस्ट मतलब अगर ब्रॉडली मैं बोलूंगा तो बेसिकली अगर आपको नी घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है और पैरों की प्रॉब्लम है, तो आपको हील बहुत कम से कम पहननी है और वो सॉफ्ट होनी चाहिए।
2: और ये खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सजेशन है जो हील की सैंडल्स पहनना कहीं ना कहीं कंपल्शन है। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: तो साथ में मतलब पहने लेकिन फिर एक्सरसाइज जरूर करें,
2: एक्सरसाइज करें और वो भी थोड़ा देखें कि आप कितना प्रेशर अपने नीज पर डाल सकती हैं, बहुत जरूरी है। साथ ही एक और सवाल था इनका कि जो लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं, जोड़ों में दर्द है, तकलीफ है, कमर में समस्या है, क्या इनको ठंडी चीजें खाना चाहिए, सजेस्टेड है या मतलब नहीं करना?
1: मतलब एज सच खाने पीने में वेदर हॉट खाना या कोल्ड बेसिकली उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इससे कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली है कि डाइट में विद एज कैल्शियम और विटामिन डी और ग्लूकोसामींस ये आपको इंक्रीज करने हैं, क्योंकि यही आपके जॉइंट्स के लिए बेटर होंगे।
2: श्रोताओं, मैं आपको एक बार फिर से

दादू आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर एफएम रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और आज हम बातें कर रहे हैं बरसात में जोड़ों की समस्याएं विषय पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जोशी, आप सभी के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर आप भी जोड़ों की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। लौटेंगे बहुत ही जल्द इस छोटे से गाने के बाद।

0: स्कूप। और इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ नेहा और मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपक जोशी। हम बातें कर रहे हैं बरसात में जो जोड़ों की समस्याएं आपको होती हैं उस विषय पर बातचीत हो रही है। डॉक्टर साहब, बहुत से मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं। तो मिलन है दिल्ली से, कह रहे हैं कि मेरे लेफ्ट पैर के तलवे में एक महीने से दर्द हो रहा है, क्या कारण हो सकता है?
1: जैसा मैंने भी बताया, तलवे का दर्द बेसिकली प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं हम इसको। तो ये या तो चोट लगने की वजह से होता है या यूरिक एसिड बढ़ने से या वैसे भी हो सकता है। तो बेसिकली है कि हील का में जो एरिया है उसमें इन्फ्लामेशन बहुत आसानी से जाती नहीं है। तो आपको एक तो बर्फ से सिकाई करनी है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं प्लांटर फेशियाइटिस की, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, वो आप करें। और साथ में फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी कुछ दिन, फिजियोथेरेपी लेजर या अल्ट्रासोनिक वो करानी पड़ेगी, आई थिंक उससे ठीक हो जाएगा
0: जी। डॉक्टर,
1: ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है।
0: बेंगलोर से एक मैसेज है संदीप का, 36 इयर्स के हैं। इनका क्वेश्चन है अबाउट जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, जानना चाहते हैं कि जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं उससे हाइपर मोबिल नीज जॉइंट की समस्या ठीक हो जाती है?
1: हाँ, हाइपर मोबिलिटी जो है ये एक तो है डिजीज की वजह से भी होती है, बहुत सारी डिजीज हैं जैसे मार्फन सिंड्रोम, एलनर डॉलर सिंड्रोम, ये सारी चीजें होती हैं, इनकी वजह से भी जनरलाइज लैक्सिटी होती है
0: जी।
1: पर नॉर्मली भी जो लोग ज्यादा बच्चे जो होते हैं जो खेलते हैं, जो जिमनास्ट होते हैं, जैसे आपने डिस्कस थ्रोअर्स, ये इन सब में भी नॉर्मल या हाइपर लैक्सिटी होना ये नॉर्मल है। नाउ स्ट्रेंथनिंग से डेफिनेटली ये कम हो जाती है, लेकिन पूरी तरह ऐसे ठीक नहीं होती स्ट्रेंथनिंग। हम सारे जितने जो बच्चे होते हैं जो हाइपरलैक्स होते हैं, जिनको हाइपरलैक्स होते हैं, सबको एडवाइस करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग से जो हाइपरलैक्सिटी की वजह से चोट लगने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। हाइपरलैक्सिटी कोई डिजीज नहीं है, हाइपरलैक्स जो होते हैं वो ज्यादा बेहतर खेल पाते हैं, ज्यादा तेज भाग पाते हैं और उनके

0: जो एक्टिविटी लेवल होता है, जो थ्रोइंग पावर होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं जयकिशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
1: जी, सवाल पूछे जयकिशन।
2: मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें, जो पहले हम लोग खाट पे और रुई के गद्दे पे सोते थे तो कमर ठीक रहती थी, अब नॉर्मल गद्दे पे, हम डल्लब के गद्दे पे सोते हैं, तो हमारे को कैसा गद्दा यूज करना चाहिए जिससे कि कमर हमारी बिल्कुल ठीक रहे? नंबर दो, जिन औरतों का, जिन महिलाओं का 25-26 साल में फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो जाता है, तो देखने में आता है कि भाई 10-15 साल के बाद 35-36 साल की उम्र में उनके कमर में दर्द रहने लग जाता है, फिर वो दर्द की गोलियां खाने लग जाती हैं, तो क्या ये उचित है या नहीं है? और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यूरिक एसिड की आपने बात की है, तो यूरिक एसिड ना बढ़े तो हमें ऐसी क्या सब्जी, क्या चीज खानी चाहिए जिससे कि हमारा यूरिक एसिड ठीक रहे? मैं टेलीफोन सुन रहा हूँ, मेरा रेडियो नहीं है।
1: जी, आप टेलीफोन पे सुनिए और आपके तीनों सवालों के जवाब आप सुनिए डॉक्टर साहब से।
0: तो पहला सवाल क्या था इनका, कि
1: जो बिस्तर गद्दा हम रुई वाले,
0: हाँ रुई वाले गद्दे जो होते थे पहले बहुत बढ़िया होते थे, डेफिनेटली उनसे कमर और बैक की प्रॉब्लम्स कम होती थी। अब जो मैट्रेस हैं, आपको जो ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना बहुत हार्ड होना चाहिए, तो बीच का होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स मैट्रेस ही आपको पहनना है जो बहुत हार्ड होता है, तो अपने हिसाब से आप देखिए कौन सा बेटर रहता है। पर डेफिनेटली जब मोटा रुई का गद्दा अभी भी बहुत बेहतर है, उससे डेफिनेटली कमर में दर्द हमने देखा है कि कम होता है लोगों को। दूसरा जो सवाल आपने किया वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल मिथ्या है। इसका मतलब फैमिली प्लानिंग से कमर दर्द का जरा भी रिलेशन नहीं है, तो ये तो आप दिमाग से बात निकाल दीजिए और आई थिंक बाकी जो श्रोता हैं वो भी निकाल दें। तो तीसरी बात यूरिक एसिड बढ़ने का है। यूरिक एसिड आम तौर पे बीमारी है, हाइपर यूरिसीमिया बीमारी होती है, इसमें एंजाइम्स की कमी होती है, इसकी वजह से कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ता है, हर किसी में नहीं बढ़ता है। हर कोई जितना भी प्रोटीन खा ले, प्रोटीन जो होता है उससे यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन हर किसी में नहीं होता है। ये जिनको वो बीमारी होती है उन्हीं में हाइपर यूरिसीमिया होता है, उनको प्रोटीन डाइट कम करने की रिकमेंडेशन है, हर किसी को नहीं।
1: डॉक्टर साहब, अब ये कैसे पता करें कि अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स है या नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, तो हमें उससे समस्या हो जाएगी या होगी, तो उसका हम कुछ इलाज, कुछ टेस्ट करा?
0: बेसिकली है कि यूरिक एसिड, सेरम यूरिक एसिड होता है, हम सबको बेसिकली जो यंगर जनरेशन है एवरी 5 ईयरली, और जो थोड़े ओल्डर है एवरी 1 ईयरली हेल्थ चेकअप कम्प्लीट कराना चाहिए, कम्प्लीट ब्लड टेस्ट हमारे कराने चाहिए। जो कम्प्लीट ब्लड टेस्ट आजकल काफी चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, तो उनमें सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, और लिवर का, किडनी का, जो KFT होता है उसका यूरिक एसिड भी होता है, और हमें बेसिकली रेगुलर लिपिड प्रोफाइल ये रेगुलर हमें कराना चाहिए, जिसमें हमें सब कुछ पता लग जाता है कि क्या बढ़ रहा है। अगर उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो डेफिनेटली आपको दवाई कम करनी पड़ेगी। नॉर्मली यूरिक एसिड से दर्द बहुत तेज होते हैं और वो पता लग जाता है, हमें डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि ये यूरिक एसिड की वजह से है।
1: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक मैसेज है, अलोका का मैसेज है, 51 इयर्स ओल्ड की ये हाउसवाइफ है, अलोका इनका नाम है, नोएडा से मैसेज कर रहे हैं, और ये डेली मॉर्निंग वॉक करती हैं, योगा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन बारिशों के समय में इनके जॉइंट में तकलीफ हो जाती है, तो ये कोई हेल्दी तरीका चाहती हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए?
0: हेल्दी तरीका है जॉइंट पेन, जो मैंने पहले ही बताया, विद एज डेफिनेटली कोलेजन स्टिफ हो जाता है। एक्सरसाइज करें, अगर आप वॉक पे नहीं जा सकते हैं बारिशों के मौसम में, तो आप साइकिलिंग करें, आप स्ट्रेंथनिंग करें, ठीक है। साइकिलिंग और स्विमिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप कर सके। बाकी बचने के लिए है कि आपको बारिश के मौसम में जैसे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, वाटर इनटेक आपको 2.5 से 3 लीटर बढ़ाना है, और साथ में आपको डाइट में, जैसे आपको बताया है कि ग्लूकोसामीन, जो हमारे सब्जियां और ये सारे जो फ्रूट्स हैं, ये आपको इंक्रीज लेने, और एक्सरसाइज अगर आप वॉक नहीं कर पाते हो तो आप स्ट्रेंथनिंग करें उस दौरान।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं मोहम्मद सरफराज आलम, और ये कहना चाह रहे हैं कि 4-5 दिन पहले से इनकी कमर से लेकर पैर तक काफी दर्द था और मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, तो इसको क्या उन्हें समझना चाहिए?
0: हो सकता है इन्होंने कुछ भारी चीज उठाई हो, ये जो बता रहे हैं ये डिस्क का प्रॉब्लम लगता है, तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए इमिडिएटली, वो बताएगा कितनी सीवियरिटी है। अगर बहुत सीवियर है तो MRI करा के कन्फर्म करेंगे और अकॉर्डिंगली दवाइयाँ या जो भी ट्रीटमेंट चलेगा। अगर बहुत कम सीवियर, अगर डॉक्टर को लगता है कम है, तो आई थिंक दवाइयों से मसल रिलैक्सेंट और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है, जितेंद्र पाटिल है महाराष्ट्र जलगांव से, और इनकी मदर की एज 62 है, वेट 77 kg है, और उनके घुटने में दर्द बहुत ज्यादा है, और ये 2 मंजिला इमारत में रहते हैं, और उतार चढ़ाव की वजह से समस्या काफी हो जाती है।

0: 16
1: ईयर एज और 62 एज है और घुटनों में दर्द है, तो डेफिनेटली घुटनों की जो नॉर्मल एज रिलेटेड आर्थराइटिस है वो उनको होगी। अगर इनको बहुत सीवियर है तो डेफिनेटली सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना इनको या तो शिफ्ट कर सकते हैं नीचे वाले घर में तो बेहतर है, अगर नहीं जो कि नहीं भी हो पाता है लोगों से तो बहुत ज़रूरी हो जो एक बार चढ़ना और एक बार उतरना वो ही करें, साथ में एक्सरे कराएं। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, अगर डॉक्टर सलाह देता कि घुटना बदलना पड़ेगा तो घुटना बदलना पड़ेगा, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऊपर नीचे भी चढ़ पाएंगी आराम से। अगर लगता है कि नहीं है एक्सरे में और इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है तो कुछ दवाइयाँ और एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।
0: ऑल राइट डॉक्टर साहब, एक कॉलर है। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे
1: हैं? नमस्ते
2: मैम, मैं पवन शर्मा बोल रहा हूँ नोएडा से।
0: पवन जी स्वागत आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछें।
2: धन्यवाद। मेरे घुटनों में पेन रहता है और मुझे आई थिंक टेनिस एल्बो भी है, तो इसमें सिकाई करनी है तो कौन सी करनी है, बर्फ वाली करनी है या गर्म वाली करनी है?
1: टेनिस एल्बो में बर्फ से करनी है और घुटनों में गर्म वाली करनी है आपको, और एक्सरसाइज दोनों में स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज होती हैं अलग अलग तरह की। टेनिस एल्बो के लिए अलग एक्सरसाइज होती हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको मिल जाएंगी, और घुटने के लिए तो एक्सरसाइज बहुत कॉमन है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी फोन करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
3: देवेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी, मेरठ से।
0: जी देवेंद्र जी, आप सवाल पूछें अपना।
3: हाँ, ये कोहनी, हमारी कोहनियों में दर्द हो रहा है, क्या आर्थराइटिस से संबंधित है ये?
1: आपकी उम्र कितनी है?
3: मेरी 60।
1: कोहनियों में जो दर्द होता है दो तरह के, गोल्फर एल्बो या टेनिस एल्बो कहते हैं, और आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है। अब ये तो देख के पता लगेगा कि कैसा दर्द है, ठीक है, तो ये आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वही आपको बता पाएगा कि क्या एग्जैक्टली है, और हर चीज का ट्रीटमेंट है और ठीक हो जाएंगे आप फिजियोथेरेपी से।
3: ऐसे सोचते हैं जी कभी ऊपर के ऊपर रह जाए, नीचे के नीचे, ऐसे सीधे करते
1: ऊपर के ऊपर सीधे के सीधे रहता है तो हो सकता है आर्थराइटिस हो रही हो, तो ये एक्सरे करा के ही पता लगेगा कितनी सीवियर है, और हर चीज का ट्रीटमेंट है, और अगर आर्थराइटिस है तो अकॉर्डिंगली इलाज किया जाएगा, अगर टेनिस एल्बो है तो अकॉर्डिंगली किया जाएगा।
0: धन्यवाद फोन करने के लिए। हेलो।
4: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
4: इमदादुल, वॉइस बेंगल से।
0: सवाल पूछे।
4: हाँ जी, जो पेन के लिए जो आइस पैक यूज करते हैं वो क्या सही है?
1: किसके लिए?
4: आइस पैक,
0: पेन के लिए,
4: पेन के लिए।
1: हर पेन के लिए आइस पैक नहीं यूज किया जाता है, जो अक्यूट पेन होती है, जो इमीडिएट चोट लगी है उसमें आइस पैक किया जाता है, और जो नॉर्मल बहुत लंबे दर्द होते हैं उसमें हॉट पैक यूज किया जाता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह है, जैसे मैंने बताया टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो, जो बोनी पॉइंट्स होते हैं, जो प्लांटर फिशियाइटिस, उसमें आइस पैक यूज किया जाता है, ठीक है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर एफएम रेनबो दिल्ली 102.6 पर। हम बस एक छोटे से अंतराल के बाद लौट कर आते हैं, आप कहीं ना जाएं, हमें संपर्क करें अगर आपके जोड़ों में है कोई भी समस्या।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक टू द शो रेडियो डॉक्टर। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं आज के कार्यक्रम में। हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर भानु बोल रहा हूँ
1: जी। अपना सवाल पूछें।
2: दिल्ली से एक्चुअली मैं जब सोता हूँ रात में एसी ऑन करके, एक बार मुझे पेन बहुत ज्यादा हो गया था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मेरे लेफ्ट कंधे में पेन होता है और अभी दवा लिया था, ठीक हो गया था।
1: भानु जी आपसे गुजारिश है, अपना सवाल एक बार दोहराएं आप।
2: जी मैं एक्चुअली एसी में सोने की वजह से मेरे बाएं कंधे में दर्द शुरू हुआ था
1: जी,
2: और अभी वो हल्का हल्का लगभग एक महीने से होता ही है, वो क्यों हो रहा है
1: जी? अच्छा अच्छा, तो सोने की वजह से इनके कंधे में।
3: एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है?
2: 33
3: एज में जनरली एसी से रिलेटेड डेफिनेटली, अगर एसी से अगर उस ज्वाइंट में कोई भी दर्द अगर आपको पहले से था तो डेफिनेटली एसी में सोने से या ठंड में वो बढ़ जाएगा। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो डायबिटिक्स होते हैं या नॉर्मल पॉपुलेशन में भी, एक स्टिफ शोल्डर प्रॉब्लम होती है या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं हम उसको अपनी लैंग्वेज में, उसमें कंधा जाम हो जाता है। जो कंधा जाम हो जाता है वो डेफिनेटली चाहे मौसम ठंडा हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे एसी के अंदर, डेफिनेटली उसमें जोड़ में स्टिफनेस और दर्द बढ़ जाती है। तो आपको बेसिकली

0: बताना पड़ेगा डॉक्टर को एग्जैक्टली किस वजह से, किसी चोट की वजह से है या नॉर्मल स्टिफनेस है, और अकॉर्डिंगली आपको फिजियोथेरेपी और कुछ स्पेशल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी पड़ेंगी। आई थिंक उससे आपको राहत मिलेगी और दर्द ये ठीक हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब कुछ मैसेजेस हमारे पास है, शशि है दिल्ली से, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स आपसे एक बार फिर से जानना चाहते हैं जिनके अंदर ग्लूकोसामाइन जो एक तत्व है वो मिलता है।
0: जिन भी फ्रूट्स में पल्प होता है, जैसे मैंगोज हो गए, जैसे ऑरेंजेस हो गए, जिसमें पल्प ज्यादा होता है वो डेफिनेटली उसमें ग्लूकोसामाइन, मोस्टली सब में ही होता है, लेकिन जिनमें जो पल्पी होते हैं और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें लीव्स ज्यादा होते हैं उनमें ग्लूकोसामाइन काफी अधिक मात्रा में होता है। तो आई थिंक सबको ये एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं?
2: नीलम बोल रही थी, दिल्ली से ही बोल
1: जी
2: रही।
1: सवाल पूछे नीलम जी।
2: हाँ जी सर को भी नमस्कार जी। सर मेरे को ना ये जानना है, मेरा जो लेफ्ट नी है ना,
0: हाँ
2: तो उसके नीचे ना काफ मसल्स में मेरे को दर्द रहता है काफी टाइम से है सर, और ये ना ज्यादातर खाना खाने के बाद होता है और पूरा फिंगर्स तक जाता है, एंकल तक भी जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा चुकी हूँ पर आराम नहीं आ रहा सर वैसे। तो यही थोड़ा मतलब आपकी ओपिनियन लेनी थी, और लत्तों की भी जांच कराई है मैंने, उसमें भी कुछ नहीं निकला।
0: अच्छा, डॉपलर भी आपको नॉर्मल निकला?
1: जी सुनिए
2: जी,
0: ठीक है, अगर आपको डॉपलर भी नॉर्मल है, वेन्स की प्रॉब्लम नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें रूल आउट यही करनी चाहिए कि वेन्स में थ्रोम्बोसिस ना हो, वो काफी रिस्की चीज होती है। दूसरा जो है इट इज बेसिकली जो काफ पेन्स होते हैं वो बहुत सारी डेफिशिएंसीज की वजह से भी होते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट जो हमने देखा है, अगर वाटर इनटेक ठीक ना हो, जो हमारे पेशेंट्स में जो भी मैं एडवाइस करता हूँ कि वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.5 से 1 लीटर बॉडी को जरूरत पड़ती है। अगर इससे कम पानी पियेंगे तो मसल स्टिफ रहेंगी और पेन करेंगे, उनमें क्रैम्प्स ज्यादा होंगे। दूसरी चीज जो रीजन हो सकता है कि आपकी मसल पुली हुई हो, क्रॉनिक मसल इंजरी हुई हो काफ की, तो उसके लिए रेगुलर रोलिंग और स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, जो कि आपको ट्रेनर या फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा कैसे इसको आपको स्ट्रेच करना है। और आपको विटामिन ई और आई थिंक मैग्नीशियम की टैबलेट्स लेंगे, तो ये भी हम कुछ लोगों में देते हैं जिनमें काफ पेन्स होते हैं, और विटामिन डी और कैल्शियम डेफिनेटली आपको 2 से 3 महीने साल में लेना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब एक मैसेज है हमारे पास, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन कह रहे हैं कि 12 वर्षीय इनकी बेटी है जिसके पैर में प्लांटर वॉट नाम की समस्या हो गई है, तो कॉजेज और ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं।
0: प्लांटर वॉट हो सकता है, वॉट्स बेसिकली स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, और बेसिकली आपको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना है, ये या तो वो दवाई देंगे लगाने के लिए उससे कम हो जाएंगे, या फिर एक्सरसाइज करना पड़ सकता है। वॉट्स के काफी सारे ऑटोइम्यून कॉजेज भी होते हैं, तो वो ब्लड टेस्ट से रूल आउट करने पड़ेंगे कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ब्लड में, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम अगर है तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन चलेंगी या दवाइयां चलेंगी। पर मोटा मोटा ये है कि वॉट काफी कभी बार पेनफुल होते हैं, तो वो अगर पेनफुल है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं या कॉस्मेटिक सर्जन को दिखाएं, वो एक्सरसाइज या लेजर या कॉटरी से एक्साइज कर देंगे।
1: जी डॉक्टर साहब एक मैसेज है, 50 वर्षीय इनकी मदर की एज है, पिछले 13 वर्षों से हर समय उनके जॉइंट्स में पेन रहता है, और सीढ़ी चढ़ने और कोई भी काम करने में, जैसे कि बहुत सारी समस्या हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आरए फैक्टर कहते हैं कि बड़ा रहता है, तो सोल्यूशन कुछ आप बताएं जो कि बहुत देर से आप बता रहे हैं।
0: आरए फैक्टर जो है ये डेफिनेटली ये इन्फ्लेमेटरी, जैसे हमने बताया अभी तक तो एजिंग हम बता रहे थे, आरए फैक्टर पॉजिटिव मतलब 40 और 37 साल के आस की उम्र से ये प्रॉब्लम है। सो जो ये ऑटो या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ब्लड में आरए फैक्टर बड़ा हो, तो इन्फ्लामेशनरी आर्थराइटिस है इनको, तो ये कहीं जाएगी नहीं, ये ब्लड शुगर की तरह है, थायराइड की तरह है, ब्लड प्रेशर की तरह है। इसमें दवाई स्पेशल दवाइयां होती हैं, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब भी की होंगी, अगर आपको आपने दिखाया होगा, जो रेमेटोलॉजिस्ट हैं या ऑर्थोसर्जन आप किसी को भी दिखा सकते हैं, एक स्पेसिफिक दवाइयां सेट ऑफ दवाइयां होती हैं जो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं। ये कम ज्यादा हम करते हैं सीजन के हिसाब से, जैसे सर्दियों में हम बढ़ा देते हैं दवाइयां और गर्मियों में हम कम कर देते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब ओम प्रकाश हैं, ओम प्रकाश खंडेलवाल हैं उज्जैन से, जब यूरिक एसिड बढ़ता है शरीर में तो कहां कहां तकलीफ होती है?
0: सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट कहते हैं, जो हमारा टो है, हमारा जो पैर का जो अंगूठा है, बड़ा अंगूठा है, सबसे पहले दर्द वहां होता है और बहुत तेज दर्द होता है, और उसमें सूजन इतनी आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है कि चला ही नहीं जाता, नींद नहीं आती, इतना ज्यादा दर्द होता है। ये कॉमनेस्ट है, बाकी लेकिन किसी भी जोन में जैसे नी में या हील के अंदर वहां भी दर्द हो सकता है, पर कॉमनेस्ट इस जॉइंट में होता है।
1: डॉक्टर साहब कुछ घरेलू इलाज भी होते हैं किसी तरह के दर्द के, अगर जॉइंट्स में कहीं पेन है तो लिसनर जानना चाहते हैं।
0: अगर घरेलू इलाज हम लेके चलें कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रीट, हम हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट और लॉन्ग

0: ट्रीटमेंट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है दवाइयां, दर्द की दवाइयां होती हैं वो, मतलब अगर दर्द ज्यादा हो तो ले लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लें, दर्द में रहने की जरूरत नहीं है। और दर्द के साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना। जो एक्सरसाइज है वो ही लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है जो दर्द को दोबारा रिकर करने से रोकेगी, जो दोबारा होने से रोकेगी।
1: डॉक्टर साहब, मेरठ से एक लिसनर कहते हैं कि इनकी एक फिंगर में बहुत दर्द होता है हाथ में, तो उसका क्या कारण हो सकता है?
0: एज बताइए इन्होंने,
1: कुछ नहीं लिखा इन्होंने।
0: फिंगर पे दर्द एक है, चोट लगी हो सकती है, जैसे मुझे भी एक बार क्रिकेट में चोट लग गई थी, बड़े टाइम बाद ठीक हुई थी। सो एक फिंगर में जो दर्द होती है वो जनरली चोट लगने की वजह से होती है। जो दूसरे कॉज हैं वो होते हैं ट्रिगर फिंगर हो सकती है, टेंडन में इन्फ्लामेशन हो सकती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, मच्छर भी काट जाएगा उससे भी इन्फ्लामेशन हो सकती है टेंडन में, तो आपको दिखाना पड़ेगा ऑर्थोपेडिक सर्जन को, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे।
1: और छोटी मोटी कहीं पे अगर कोई दर्द होने लगता है तो उससे ज्यादा परेशान होने की बजाय थोड़ा सा देखेंगे कितने समय तक दर्द है, हाँ, और फिर डॉक्टर को दिखाएं।
0: डेफिनेटली आप आइस पैक लगाएं, बर्फ से सिकाई करें, अगर इमीडिएट दर्द स्टार्ट हुआ है आपका वेट करें, ज्यादा पेन किलर्स नहीं लें, आई थिंक सिंपल पैरासिटामोल की टैबलेट आई थिंक काफी होती है अगर बहुत दर्द है, दो तीन दिन वेट करें, आई थिंक दो तीन दिन में ठीक हो जाता है, अनलेस अनटिल इतना दर्द है कि बर्दाश्त से बाहर है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज है, वीना जी पूछ रही हैं, 35 इयर्स की हैं, कहती हैं कहीं भी अगर नस दब जाती है तो उसके बाद पूरी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है और हिचकी भी आती है।
0: ऐसा चेस्ट का कोई लिंक नहीं है, हिचकी अलग प्रॉब्लम है, नस जो चढ़ना है जो मैं समझ रहा हूँ इनसे वो है क्रैम्प। जो क्रैम्प है वो बड़े सारे कॉज होते हैं और सबसे कॉमनस्ट कॉज जैसे मैंने बताया पानी कम लेना और कैल्शियम और विटामिन डी कम लेना, ये कॉजेज सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। तो जनरली क्रैम्प एक मसल में अगर क्रैम्प आया तो जनरली वो डेफिशिएंसी तो पूरी बॉडी में है ना, तो दर्द हमेशा पूरी बॉडी में रहता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन बोल? नमस्कार जी, नाम बताएं जल्दी से।
2: जी मैं मनोज किशनगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
1: जी मनोज जी, सवाल पूछें, समय कम है।
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार।
2: मेरा प्रश्न ये था सर कि मेरे दाएं कंधे के ज्वाइंट में जो ये काफी पुराना दर्द है और मूवमेंट वगैरह सब सारा सही है, डॉक्टर को भी दिखाया, एक्सरे में भी कुछ नहीं निकलता है, लेकिन हाथ वगैरह उठाने वगैरह में ये दर्द करता है, ये कंटिन्यू बना हुआ रहता है, ये लगभग 12 से 15 साल से ये कंटिन्यू है सर।
0: आपने MRI कराया होगा?
2: MRI तो नहीं कराया, मैं एक्सरे कराया था, एक्सरे में कुछ नहीं आया।
0: तो मोस्टली अगर आपकी मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको स्टिफ शोल्डर नहीं है, एडेप्सिक एस्ट्रोलाइटिस आपको नहीं है, तो हो सकता है एक मांसपेशी होती है जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ, वो काफी बार इस एज में इस उम्र में टूट जाता है या टेयर हो जाता है या पार्शियल इंजरी हो जाती है, उसमें थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से दर्द बना रहता है और रात को सोने में भी तंग करता है। तो इसमें नॉर्मली MRI करा के कन्फर्म करना चाहिए वेदर वो टेयर है कि नहीं है, अगर टेयर है तो इलाज उसका डिफरेंट है, अगर टेयर नहीं है या पार्शियल टेयर है तो उसमें कंधे में कई बार इंजेक्शन देना पड़ता है और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं कंधे की जो हमें स्ट्रेंथन करना पड़ता है जिससे ये दर्द जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब अब मेरे कुछ सवाल हैं क्योंकि समय बहुत कम है और अब मैं सोचती हूँ कि मैं अपने सवाल आपसे पूछ लूँ। जब भी शरीर में कहीं दर्द होता है तो जनरली हमारा मन में आता है कि हम जाकर एक पेन किलर ले लें या फिर ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले लें, क्या ये सही तरीका हो सकता है?
0: नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि एकदम से दर्द में एकदम से अगर दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा वेट करें, सिकाई करें, हॉट पैक लगाएं। पेन किलर के हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं
1: जी,
0: पर यह भी नहीं है कि अगर आपको बहुत दर्द है आपको बर्दाश्त ही करना है, अगर बहुत ज्यादा पेन दर्द है तो आप मतलब पैरासिटामोल 650 mg आप ले सकते हो, आप देखें थोड़ी सेफ मेडिसिन है ये, अगर मसल पुल है बिल्कुल ही चला नहीं जा रहा तो आपको मसल रिलैक्सेशन लेने पड़ेंगे, पर ऐसा सच है कि इमीडिएट थोड़ा वेट करें, सिकाई करें, थोड़ा रेस्ट करें, बॉडी को रेस्ट दें, हील करने का पहले मौका दें दवाई लेने से पहले।
1: डॉक्टर साहब सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो चलते चलते हमारे लिसनर्स को कुछ आप सुझाव, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि वो अपने जॉइंट्स को लंबे समय तक दुरुस्त रख पाए।
0: सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों को बचपन बच्चों के लेवल पे लेके जो ये जो फूड खाते हैं जो जंक फूड है, डेफिनेटली मैं मना तो नहीं करूंगा क्यों मानेंगे तो नहीं तो, लेकिन डेफिनेटली हेल्दी फूड खाएं। कैल्शियम ये नहीं है कि बूढ़ों को ही लेना है, बचपन से लेके लेना शुरू करना पड़ेगा एडिक्वेट अमाउंट में और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो पीक कैल्शियम लेवल है पीक बोन लेवल है वो 30 साल की उम्र में होता है, उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है, तो जो आपको पीक बनानी है वो ऐसी बनानी है कि आपका ओल्ड एज तक नॉर्मल ही रहे, कभी घटे नहीं, जैसे कुछ लिसनर्स बहुत अच्छा कर रहे थे उनको कोई दर्द नहीं था। एक्सरसाइज करें, वॉक करें अपने हार्ट के लिए और एक्सरसाइज करें अपने ज्वाइंट्स के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतने विस्तार से इतने सारे क्वेश्चन

0: के आंसर किए और अभी भी सवाल खत्म नहीं हुए, फोन लाइंस अभी भी बज हो रही है यहाँ पर और मेरे सवाल तो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं हो पाए। बहरहाल आप आए, इतने आपने हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दिए, जानकारी आपने शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।
0: ऑल राइट लिसनर्स, तो ये था आज का रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर दीपक जोशी हमारे साथ थे सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। उम्मीद करती हूँ कि आपने जितने भी सवाल पूछे हैं आपको अपनी समस्या का निजात यहाँ पर मिला होगा। इसी तरीके से रोजाना आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं, अपनी समस्याओं का आप समाधान यहाँ पा सकते हैं। कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर, दोपहर 3 बजे रोजाना FM रेनबो दिल्ली पर हम आपके लेकर आते हैं। और इस कार्यक्रम से मुतालिक कोई आपकी राय है, कोई सुझाव, कोई फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें दिल खोलकर लिखिए विस्तार से healthairdaily@gmail.com। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम मैं नेहा यहीं समेट रही हूँ। तब तक आप रखें अपना ख्याल और यूं ही बने रहें रेनबो दिल्ली के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 8 से 9 और देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 17,000 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी। और खेलों में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी के कनीजा ओपन 2026 में जीत हासिल की। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: जी हाँ, और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। प्रोग्राम कौन सा है? प्रोग्राम है वही जाना पहचाना हमेशा का पुराना, आपका अपना यूथ स्पीक्स। जी हाँ, वही प्रोग्राम जिसमें लेकर आते हैं हम एक यूथ आरजे को, जो करते हैं अपने दिल की बात आपके साथ हर सोमवार शाम 4 बजे। तो देखिए ना, आज यूथ स्पीक्स में किसकी है बात आपके साथ कुछ खास करने के लिए मुलाकात आई है हमारे साथ प्रोग्राम अल्फा जेन के यूथ स्पीक्स में। तो बहुत बहुत वेलकम है जी, अपना नाम बताएं ना, कौन है हमारे साथ आज?
1: हेलो हेलो, हाय, नमस्कार आप सभी को, और मैं हूँ आपकी आरजे फॉर यूथ स्पीक वंशिका।
0: क्या बात है, कितनी स्वीट सी आवाज़ है। फिर तो आपको मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब लग रही होगी, यदि वंशिका इतना स्वीट बोलूँगी ना तो मेरे सारे लिसनर्स जो हैं वो यहाँ से भाग लेंगे, वो कहेंगे भाई हमें तो ना इस वंशिका से मिलना है कि जो इतनी प्यारी सी आवाज़ की मलिका है, यदि इतना सॉफ्टली बोलेंगी तो वो यहाँ आ जाएंगे। कैसे चलेगा ऐसे?
1: क्षमा।

0: जी हूँ रॉकी रश्मि, सॉरी, बट मुझे लगता है कि जैसी आपकी मधुर आवाज है उतनी मधुर आवाज मेरी अभी तक हुई नहीं है.
1: ऐसा नहीं है, पता है हमारे साथ जनरली क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो आरजेज होते हैं ना, उनकी आवाज कुछ खास होती है। एक्चुअल में हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमें खास बनाते हैं। तो जो भी बोले, बिंदास बोले, खुलकर बोले, सॉफ्टली बोले, लेकिन दिल से बोले। तो हमारे साथ है वंशिका पाठक, एक बहुत अच्छी मतलब आर्टिस्ट हैं ये, और बहुत कुछ करती हैं। वंशिका, अपने बारे में क्या बताना चाहेंगी?
0: फिलहाल तो यही बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि रॉकिंग रश्मि के साथ हूँ और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्या करूँगी. बट उसके अलावा, मतलब आज के शो के अलावा, मैं एक एक्टर हूँ. मैं थिएटर करती रहती हूँ, तो
1: ओके,
0: बहुत से नुक्कड़ नाटक करे हैं.
1: क्या
0: उसके
1: बात
0: साथ
1: है.
0: ही साथ बहुत अच्छी कविताएं पढ़ने का और लिखने का शौक है,
1: अच्छा.
0: तो कविताएं लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, कहानियाँ पढ़ती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ. और फिलहाल अभी सोच रही हूँ कि कुछ अलग और कुछ हटकर क्या कर सकती हूँ, तो सोच ही रही हूँ. कुछ अच्छा ऐसे किया नहीं
1: तो
0: अभी
1: बस
0: तक.
1: यही जो सोच है ना हमारे यूथ आरजे वंशिका पाठक की, या ये कह लीजिए हमारी आज की जनरेशन की, एक नई सोच के साथ. यूथ स्पीक्स में है आपके साथ वंशिका पाठक, और मैं हूं आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि.

0: जी हाँ बिल्कुल, इसी जज्बे के साथ हमारे साथ आज कौन है हमारे यूथ स्पीक्स में?
1: आकाशवाणी एफएम रेडियो पे 102.6 पर आपके साथ हूँ मैं यूथ आरजे वंशिका पाठक। सुबह से चल रही है भागदौड़ में, सोचा थोड़ा वक्त निकाल के आपसे अपनी दिल की बात कर लूँ। पता है आजकल हमारी जनरेशन को देखती हूँ तो लगता है हमें कितने अजीब फेज से गुजर रहे हैं। सपने बहुत है, ऑप्शन बहुत है, इंटरनेट पर हर बात का सवाल का जवाब है, लेकिन जब कोई पूछता है कि लाइफ का क्या प्लान है तो बस ब्लैंक हो जाती हूँ। रिलेटिव्स पूछते हैं करियर, शादी, अर्निंग, इन सब के बारे में, और बस स्माइल कर सोचने लगती हूँ कि काश काश कोई होता जो बता देता कि क्या करना है आगे। हमें एम्बिशंस भी हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और महीने की 25 तारीख को बैंक बैलेंस देखकर थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। बचपन में कितना सिंपल था ना सब, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई एक्टर, कोई टीचर या फिर कोई पायलट। लगता था बड़े होने पर तो अपनी मर्जी से आइसक्रीम खाएंगे, कोई होमवर्क नहीं देगा। फिर एडल्ट उड़ा गया, होमवर्क तो चला गया लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। लिंक्डइन खोलते ही लगता है सबने दुनिया जीत ली है।
0: बिल्कुल, कितने सारे सवाल हैं भाई जेन ज़ी की, इतनी ज्यादा परेशानी। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था वंशिका कि जो हमारी ये जनरेशन है, आपकी जो जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा मतलब टेंशन फ्री रहती है, बट आपकी टेंशन्स को सुनकर पढ़कर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वाकई में मतलब हमसे ज्यादा टेंशन्स तो आपके पास है। ऐसा है वाकई में?
1: बिल्कुल ऐसा है रश्मि जी, आपको नहीं पता कैसा चल रहा है, बस लगे पड़े हैं, कहीं नहीं पता है कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि घर जाके मम्मी पूछे कि और फिर क्या प्लान है।
0: तो चलिए वंशिका के साथ करेंगे और भी बातें, लेकिन अभी अभी जितने सारे इन्होंने सवाल पूछे और सवालों का सोच कर इनको चक्कर आ रहे हैं ना, फिलहाल मेरे दिमाग में चक्कर तो नहीं लेकिन एक गाना आ रहा है जो वंशिका की पसंद का है। इसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं प्रोग्राम यूथ स्पीक्स में।

0: एक बार फिर से यूथ स्पीक्स में आपके साथ हूँ। मैं आपकी अपनी आरजे रश्मि, और हमारे साथ है हमारी आज की गेस्ट वंशिका। वंशिका, और क्या क्या चल रहा है मन में?
1: रश्मि, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था ये, अभी अभी हमारे दिल में। तो अभी अभी हमारे दिल में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ, जो कि हम सब समझते हैं।
0: अच्छा,
1: इंटरनेट और उस पे करते हुए स्क्रोलिंग, जो कि अगर 5 मिनट करो या फिर 5 से वो 5 घंटे हो जाए,
0: पता नहीं चलता।
1: जैसे कि मान लीजिए किसी की स्टोरी देख ली और पता लगा कि अरे इसने नई गाड़ी ले ली, भाई का तो प्रमोशन हो गया है, और वो भी 25 लाख का प्रमोशन हुआ है। और फिर ऐसा लगता है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है।

0: मेरी जिंदगी में ये भी टेंशन है
1: या फिर
0: ना।
1: बिल्कुल, या फिर कोई कहेगा कि आज मैं 1 घंटा रोई हूँ क्योंकि मेरे मैनेजर ने बोला है लेट्स कैच अप आफ्टर दिस मीटिंग।
0: हाँ,
1: कौन डालता है ये सारी
0: और
1: बातें?
0: ये टारगेट है जो उसको पूरा नहीं किया है, तो
1: वही
0: यदि शाम तक
1: तो,
0: ये टारगेट नहीं हुआ तो यू आर फायर्ड।
1: बिल्कुल। मतलब जॉब कब चली जाए भैया को भी नहीं पता है, लेकिन जॉब की खुशी तो डाल दी है हमने। हर कोई सनसेट के बारे में डालता है ना, पर कोई भी ट्रैफिक जाम या सैटरडे या संडे के लिए 2 घंटे ऑफिस जाने पड़ता है वो नहीं डालता है। सो जब भी अगली बार किसी भी की जिंदगी देखे और लगे कि अरे इसका तो सब कुछ सॉर्टेड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लेट्स कैच अप लेटर वो हमको नहीं पता है। एंड प्लीज कंपैरिजन कम करिए, थोड़ा स्क्रॉलिंग भी कम करिए इंटरनेट पर, और अपनी एक्चुअल लाइफ में थोड़ी ज्यादा स्क्रॉलिंग करिए।
0: सच मानिए तो दोस्तों, ये बात बहुत ही अच्छी बोली है वंशिका ने कि कितना ज्यादा हम इस बात को सोचते हैं कि जहां हम एक बार स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं ना, अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू हो या लैपटॉप्स के थ्रू हो, वो कब 5 सेकंड से 5 घंटे की हो जाती है और हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। और उस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम उसको प्रोडक्टिव बनाए इंस्टेड के उसको हम टाइम को वेस्ट करें। और खास तौर पर ये जो इस वक्त हमारे साथ जेंजी बैठी है, इनके मन में इतने ख्याल हैं, इतनी टेंशंस हैं, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। एक नया प्रोस्पेक्टिव आज मेरे सामने आया है इस जनरेशन का। लेकिन ये भी फैक्ट बहुत अच्छा बताया वंशिका ने कि यदि हम थोड़ा सा कम कर लें इन चीजों को, तो वो यकीन मानिए आपकी जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। राइट,
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि आपने।
0: तो चलिए एक और ट्रैक सुनते हैं। मोहित चौहान की आवाज है और गाना तो ऑब्वियस सी बात है बहुत खूबसूरत है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: तो आपके साथ है आपकी RJ वंशिका FM रेडियो पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं यूथ एक नई सोच। और जैसा कि हमने अभी सुना, जहां बनी चाहता था कि वो उड़ना चाह रहा है, दौड़ना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, बस रुकना नहीं चाह रहा, जिसके लिए उसने नैना को भी छोड़ दिया, उसी तरीके से आज का यूथ काफ़ी परेशान है अपने करियर को लेकर। और जैसा कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं या फिर रिलेटिव्स चाहते हैं कि स्कूल में बेटा मार्क्स कितने आए, कॉलेज में बेटा प्लेसमेंट हुई, जॉब में बेटा पैकेज कितना लगा है, और शादी के बाद बेटा गुड न्यूज़ कब दे रही हो। कैन वी प्लीज हैव वन स्टेज ऑफ लाइफ वेयर नोबडी आस्क क्वेश्चंस एंड देन एवरीवन, जहां पर सब लोग खुश हैं, चाहते हैं अपनी खुशियां बताना, और एक अलग सी जिंदगी के ऊपर हम चल रहे हैं, जहाँ पर हम सब डिसाइड ही कर रहे हैं कि लंच में क्या बनाना है। कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 21 पे पता नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं पता कि जब 25 हो जाएंगे तो क्या हम करियर बदल सकते हैं कि नहीं, या फिर 30 पर आने के बाद कुछ करना है या 40 के आने के बाद करना है। हमें लगता है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या ज़िंदगी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई डेडलाइन नहीं है चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए
4: जी।
3: कोशिश करते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी का जो स्टेयरिंग है वो हमारे हाथ में है।
4: बिल्कुल,
3: जैसे बनी ने अपने हाथ में ले रखा था, वैसे हमें भी अपने हाथों में इस जिंदगी की स्टेयरिंग को रखना पड़ेगा।
4: बिल्कुल रखना पड़ेगा। और कहते भी हैं यही कि भाई ज़िंदगी है, मंजिल भी जरूर मिलेगी, लेकिन आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ और पूरी कोशिश के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। और ऐसा ही कुछ कह रहे हैं हमारे लकी अली इस गाने में। चलिए गाने को एंजॉय करते हैं और वापस आती हूँ आपके पास एक बार फिर से आपके अपने प्रोग्राम अल्फा जेन के यूथ स्पीक्स में।

0: दोस्तों, यूथ की लाइफ भी तो एक सफरनामा ही है। कभी डेस्टिनेशन पता होती है तो रूट नहीं, कभी रूट पता होता है पर बीच में प्लान ही चेंज कर देते हैं। और हमारी जेनरेशन की सबसे खास बात यही है, हम हर चीज़ का जवाब पहले से लेकर नहीं चलते। हम कोशिश करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी कभार गलत टर्न भी ले लेते हैं। और फिर इंटरनेट की तरह लाइफ भी बोल देती है रिकैलकुलेटिंग। नई सोच का मतलब भी शायद यही है। ज़रूरी नहीं कि हम वही रास्ते चुने जो हमसे पहले सबने चुना। अपना रास्ता बनाना भी तो एक सफ़र का ही हिस्सा है। तो अगर आप भी लाइफ के उस फेज़ में हैं जहाँ डेस्टिनेशन थोड़ी धुंधली है, कोई परेशानी नहीं है, विंडो सीट पकड़िए, सफ़र का मज़ा लीजिए। क्योंकि कभी कभी मंजिल से ज्यादा यादगार सफरनामा होता है।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी बात बोली ना वंशिका ने। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो होता है वो सफ़रनामा यानी कि आपका सफ़र होता है। और ख़ास बात ये है कि यदि उस सफ़र में आपका कोई मनचाहा साथी आपके साथ हो, चाहे वो एक बुक हो, आपका मोबाइल हो, या फिर आपका हो रेडियो और रेडियो पर बज रहा हो आपका कोई फेवरेट ट्रैक, तो यकीन मानिए उस सफ़र में चार चांद लग जाते हैं और आपकी जो मंजिल है वो कब आ जाती है आपके पास आपको पता भी नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं अल्फा जेन के यूथ स्पीक्स में आज की हमारी यूथ गेस्ट वंशिका पाठक के साथ, और मैं हूँ आपकी अपनी कौन, मैं हूँ रॉकिंग रश्मि।
2: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं, इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट

0: और जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन, और आज हमारे साथ हैं,
8: मैं हूँ आपकी आरजे वंशिका पाठक,
7: और वंशिका के साथ मैं हूँ आपकी अपनी रश्मि।

0: सबसे कंफ्यूजिंग क्या है ये जवानी का, क्या लगता है आपको खुद को पहचानना? क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के पास आपके लिए एक आइडिया है, एक ओपिनियन है। पेरेंट्स को पता है कि हमें क्या करना चाहिए, दोस्तों को पता है कि हमें क्या करना चाहिए, और रिश्तेदार तो बिल्कुल ही जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर आता है हमारा सोशल मीडिया, जहाँ पे सुबह 5 बजे उठकर हमें फटाफट जाकर अपना एक मॉर्निंग रूटीन करना है, मेडिटेशन करना है, फिर जिम भी करना है और एक ग्रीन जूस भी पीना है। लेकिन फिर आती है लाइफ की रियलिटी। सुबह 8:30 बजे उठकर अलार्म क्लॉक के साथ लगे पड़े हैं कि बस 5 मिनट और सो जाती हूँ। खुद को जानना, खुद को पहचानना एस्थेटिक हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार कुछ नया भी ट्राई कर लेना चाहिए, जैसे कि एक किताब पढ़ना चाहिए, कहीं घूमने चले गए, या वो नौकरी छोड़ दी जहाँ पर मैनेजर काम खत्म होने के बाद भी रोक लेता है, कुछ नए लोगों से मिलना, कुछ चीज़ें जानना खुद के बारे में और खुद को बदलना, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। और जब हम बदलाव करते हैं तो कई बारी वो कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है और हमें पता होता है कि असलियत में हम क्या चाहते थे।
1: बिल्कुल। और ये जो असलियत जब पता चलती है ना, तब हमारी मंजिल हमें क्लियर नजर आने लगती है और हमें पता चलता है कि हाँ, हमें वहां तक पहुंचना है। और उसका रास्ता जो हमने ऑलरेडी बना दिया है, उस पर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्योंकि एकदम से यदि हम रेस लगा देंगे ना, तो शायद उस रास्ते तक हम सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन धीरे धीरे चलकर डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे भी और सक्सेसफुल भी डेफिनेटली होंगे।

से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है यूथ स्पीक्स और आज हमारे साथ हैं हमारी यूथ आरजे वंशिका। वंशिका ने बहुत सारी बातें बताई अपनी जनरेशन के मतलब प्रोज एंड कॉन्स भी बताए, उनको ये भी बताया कि कितनी सारी चिंताएं लेकर ये जो हमारी जेंजी है ना ये आगे बढ़ रही है और उन्हें केवल उन्हीं की नहीं उनके सपने भी बहुत हैं, उनके डेस्टिनेशन भी बहुत हैं और वो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जिन प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम जो इनके इनसे ऊपर हैं या इनके पेरेंट्स कह लीजिए या इनके जो रिलेटिव्स हैं, प्लीज प्लीज प्लीज जनाब थोड़ा सा रुक कर जरा इनका साथ दीजिए, साथ में इन्हें बताइए कि हाँ यदि तुम हमारे साथ हाथ पकड़ के चलोगे तो हम तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा जाएंगे, लेकिन साथ साथ इस जनरेशन की बात भी आपको सुननी है। क्या कहते हो वंशिका इस बारे में?
3: बिल्कुल रश्मि, आपने बहुत सही कहा, जनरेशन की बात सुननी है, हम अपनी बात सुनाना चाहते हैं, कोई चाहता है जो हमें सुन के समझे।
2: हाँ हाँ।
3: और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि आजकल बहुत चीज़ें हो रही हैं और अगर हमें कोई सुन ले तो शायद

0: ऐसा हो सकता है कि जो परेशानियां या मुश्किलें जो हमें सहनी पड़ती है वो हम ना सहे और कोई बड़ा हमें बताकर चला जाए कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे था,
1: बिल्कुल
0: तो वही है। और आज के इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी बातें करी हैं, हमने सोशल मीडिया के बारे में बात करी है, हमने फेलियर्स के बारे में बात करी है और सबके बारे में बात करी है। और कितना ब्यूटीफुल है ये कन्फ्यूजन जो आता है जब आप यंग होते हैं, और कई बारी सारे सवालों का जवाब नहीं भी है तो चलता है काम,
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि सारे सवालों का जवाब आज ही मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए सबको, और कभी ना कभी अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती से कुछ नया सीखने को मिलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उसी के साथ ही साथ कभी अगर कभी लगे कि जिंदगी बहुत परेशान है, बहुत खराब है, तो ज्यादा मत कहिएगा, क्योंकि जैसे मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ तो उन्हीं की एक मूवी का डायलॉग है कि जिंदगी बहुत लंबी है, बरखुरदार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्या पता कल हो ना हो।
1: बिल्कुल कल हो ना हो। लेकिन खास बात यहाँ पर एक और कहना चाहूंगी आप सभी से जो मुझे सुन रहे हैं वंशिका की, अभी आपने बात सुनी कि ज्यादा कुछ मत कहिए, मैं कहूंगी कि ज्यादा कहिए लेकिन अपने किसी खास को, अपने किसी अपने को आप अपने मन की बात जरूर कहिए, अपने दिल में बिल्कुल मत दबाइए, क्योंकि जब बातें दिल में रह जाती हैं ना तो शायद वो बवाल बना देती हैं, और बवाल हमें नहीं बनाना है, हमें उस बवाल को ख्याल बने अपने दिल में रखना है, लेकिन साथ साथ अपने किसी अपने के साथ शेयर जरूर करना है। वंशिका आप यहाँ आई, आपने इतनी सारी बातें की अपनी जनरेशन के बारे में, अपने मन के बारे में, आपको कैसा लगा?
0: बहुत ही अच्छा लगा रश्मि, क्योंकि पहली बार करा है ऐसा कुछ जहाँ पर अपनी ये जो सोचती हूँ जैसा सोचती हूँ वैसा ही बताया है, कोई फिल्टर नहीं रखा, और ऐसा लगता है कि जो भी मुझे सुन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि उनको आज मेरी आवाज़ सुन के और मेरी बातें सुन के अच्छा लगा हो।
1: डेफिनेटली लगा होगा, और मुझे लगता है हमारे सभी लिसनर्स, यदि आपको आप अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो आप बिंदास बोल में बिल्कुल बिंदास तरीके से लिख सकते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। वंशिका आप यहाँ आए, बहुत बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हमारे रेनबो के लिसनर्स को इतनी अच्छी बातें बताई भी और अपने मन की बातें शेयर की। इसी के साथ यूथ स्पीक से हम लोग लेते हैं इजाजत।
0: नमस्कार दोस्तों।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत रूस संबंध लगातार मजबूत और व्यापक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग आपसी हितों और विश्वास पर आधारित है। डॉ जयशंकर कल दो दिन की रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। वे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आया था। हालांकि इसके बाद दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। इन पर लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम साजिश में भी शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित और मजबूत भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। निदेशालय ने दोनों आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कल गिरफ्तार किया। दोनों को गोवा की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद WR खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हिल पीपल्स यूनियन से की थी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल 115 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में आज शाम नीदरलैंड्स में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए

0: दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मदुरोफ के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेले नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समुद्देश्य तेन प्रोदीरितं यद् भारतं पञ्चदश ट्रिलियन डॉलर परिमितस्य जीडीपी संपदः प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः विविध राष्ट्रैः सह वाणिज्य वार्तां विधत्ते। अस्माकं देशस्य मुक्त व्यापार संधिः जगद् व्यापारस्य पञ्च सप्ततिः भागं परिपूरयिष्यन्ति इति उक्तम्। भारतस्य उच्चतम न्यायालयेन झारखंड राज्यस्य संयुक्त नागरिक सेवा परीक्षायां संजातानां अनियमिततानां सीबीआई दलेन निष्पक्ष विशोधनाय याचिकां स्वीकृत्य केन्द्र राज्य शासनाभ्यां सूचना पत्रं प्रेषितम्। मुख्य न्यायाधिपतेः सूर्यकांतस्य न्यायपीठेन झारखंड लोक सेवा आयोगाय अपि निर्देशो प्रदत्तः। उच्च न्यायालयः पूर्वमेव परीक्षा निरस्तीकरणस्य निर्णयं स्थगितवान्। उज्जैन्यां श्रावण मासस्य अन्तिम सोमवासरे भगवान महाकालः पञ्चामृतेन अभिषिक्तः भस्मना च समलंकृतः। मंदिर द्वाराणि ब्रह्म मुहूर्ते सार्धद्विवादने उद्घाटितानि। अद्य सायंकाले मंदिरात् प्रस्थिता शोभायात्रा रामघाटं यावत् यास्यति, यत्र क्षिप्रानद्याः पावन जलेन भगवतः चन्द्रमौलेश्वरस्य विशेष अर्चनं विधास्यते। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवानः अद्य नवदेहल्यां सम्मेलनं सम्बोध्य प्रावोचत् यत् पीएमएफएमई योजना माध्यमेन द्विलक्षाधिकेभ्यः सूक्ष्म खाद्य उद्यमिभ्यः अभ्युदयः साध्यते। तेन प्रकटीकृतं यत् अस्याः योजनायाः फलम् आसाद्य 10 लक्ष जनाः साक्षात् वृत्तिम् अवाप्नुवन्। एषा योजना उद्यमिता क्षेत्रे महिलानां सहभागितामपि संवर्धयति।
1: पीएमएफएमई की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं।
0: लखनऊ नगरे समनुष्ठिते 18वें ब्रिक्स अकादमिक अधिवेशने विदेश कार्य सचिव सुधाकर दलेला अब्रवीत यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथमम् इति मौलिक सूत्रे प्रतिष्ठिता वर्तते। तेन प्रकटीकृतं यत् अयं संघः नवोन्मेषं सहयोगञ्च प्रवर्धयितुं यतते। अस्याः प्रक्रियायाः भागत्वेन राष्ट्रस्य 30 नगरेषु 400+ सम्मेलनानि निर्व्यूढानि सन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान अधिकारिभिः श्वः यावत् छत्तीसगढ़ बिहार ओडिशा प्रान्तेषु अति पर्जन्यस्य पूर्वानुमानं प्रकटय्य नारंग वर्णीय संचेतना प्रख्यापिता। अपि च देहल्यां झारखण्डे कर्णाटक केरलयोः तटीय प्रदेशेषु च मध्यमा तीव्रा वा वृष्टिः संभाविता। देहली विमान पत्तने तु मंद दृश्यात्मकत्वात् 14 वायुयानानां गतिः अन्यत्र मोचिता। यात्रिभ्यश्च सूचना संपर्काय उपदेशो प्रदत्तः। संयुक्त राष्ट्र संघस्य मरुस्थलीकरण प्रतिरोध परिषदि भारतस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन् केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादवः प्रावोचत् यत् भूमेः और्वर्य रक्षणं न तु केवलं व्ययमात्रम् अपितु भावि संततेः जीवन धारणाय अत्यावश्यकं वर्तते इति वार्ताः।
2: বাতৰিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ ষ্টুডিঅৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু ডিআৰএম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এইবাৰ শুনাবলৈ লৈছো দৰিণা মহন্তৰ কণ্ঠত বৰগীত।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।

0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Mr. Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jayashankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting.

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 8:45ৰ পৰা ক্ৰমে সমাচাৰ সন্ধ্যা, নিউজ এট 9 আৰু স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए

0: कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
1: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
1: इन बायलैटरल ट्रेड बाय 2030।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
1: We have free trade agreements or preferential market access.
4: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान

0: उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाएं। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती

0: लेकर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्सलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3 के मुकाबले 5 गोल से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. The Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary ERS, Mayank Singh, were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
3: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your

सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

0: வந்தே மாதரம்.
1: சுஜலாம் சுஃபலாம் மலயஜ சீதலாம்.